स्वपुरुख निरंजन हार पुरुख निरंजन अर्गम अगम्य अपारा सब ध्यामे सब ध्यामे तुद जी हर सच्चे सिर जनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा अर त्यावो संतो जी सब दुख विसार नहारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते

रहाओ। जब तब संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा।

प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अबर ना त्याहूं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख मारे तारिया है, चुन चुन शत्रु हमारे मारिया है। आप हाथ दे मुझे उबर है, मरण काल का त्रास निभर है। उज्जो सदा हमारे पछा श्रीयस्त।

अपना जानम जय प्रत प्रिया है, चुन चुन शत्रु हमारे मरिया है, देख देख जग में दो चल्ला है, राखा मैं और ना दला है।

तो हे अपना जान करो ब्रत पार, तुम साहेब मैं किंकर थारा, दा जान दे हाथ उबारो, हमरे सब एरियन संगारो, प्रथम तरो भगवत को त्याना, बहुर करो कविता विदनाना, किशन जथा मच्छर तरु चारो, चूको ये कबले सुधारो, कब बाज दोहरा, जो निज ब्रह्म सो कहा, सो कह हाऊ जग माहे, जो ते प्रभु को त्याय है, अंत स्वर्ग को जाहे दोहरा, हर हर जंदुई एक है, बिबिचार कछ नाहे, जल ते उपज तरंग ज्यो, जल ही बिखे समाहे दोहरा, जब आयस प्रभु को पयो, जन्म धरा जग आए, अब मैं कथा संक्षेपते, सब हूँ कहत सुनाए कब बाज दोहरा, ठाड पयो मैं जोर कर, बचन कहाँ सिर न्याए, पंथ चला तब जगत मैं, जब तुम करो सहाय दोहरा, जे जे तुमरे ध्यान काओ, नितुड़ त्याय है संत, अंत लहेंगे मुक्त फल, पामेंगे भगवंत दोहरा, कालपुर की देह मो, कोटक विषण महेश।

समेत चौपाई जो एक कथा सुने अर गावे दुख पाप दे निकट न आवे मिशन भगत की ए फल होई आद ब्याद शब सके न कोई समद सतरे सहस पचावन हाड़बदी प्रथम सुखदावन तो प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लो सिलेहो सुधारा दोहरा नेत्र तुंके चरण तार सदर वधीर तरंग श्री भगवत पूर्ण कियो रघुबर कथा प्रसंग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सगल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाहे गहे जब ते तुमरे तब ते कौ माग तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सवै बहुभेद गहे अमेक ना जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तो हे बखान्यो।

प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन मजियां वाधाइयां राग रतन प्रवार भरियां शब्द

आए मिला मेरे भाई। हुण सतसंग जी इत्थे मान शब्द है ना, वह दो बार आया, सुन तो बाद एक ते मम्मा ते नन्ना दोनों अखर ने। एक मम्मे टिपी नन्ने सिहारी मन, एक मन लई शब्द आया, एक मनण लई शब्द आया। महाराज जी कहिंदे सुन मन, ऐ मना सुन, मन मन दे विच इस नूं मनण करके बसाए, तू बसा किस चीज़ नूं? गुरु दे उपदेश नूं, गुरु दे नाम नूं। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु।

के बेनती की, महाराज माफी चाहने हाँ, अज अमृत वेले आ नहीं होया। जदों सैन जी ने वचन कहे राजा हस पिया, कहिंदा भगत जी क्यों मजाक करदे हो, अपने गल च नजर मार के देखो, आ माला सी सवेरे तो तुहाडे गल च पाई है, नाले तुहानू कहा सी वी मुड़ के नहीं आउणा, तुसी हुक्म भेजणा है, जो चाहीदा तुहानू घरे मिलिया करेगा। जदों सैन जी ने नजर मारी अपने गल चो माला जिहड़ी वाहिगुरु दे गल च पाई सी, वो गल च पई नजर आई ते समझ गए कि मेरी थां ते मेरा मालक कलावरत आ गया है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। महाराज जी इत्थे वचन करदे आ, सुन मन मन वसाए तू आपे आए मिले मेरे भाई। वाहिगुरु नूं, वाहिगुरु दे नाम नूं, वाहिगुरु दी बाणी दे बचना नूं सुन के अपने हिरदे च बसा पाई, वो आप आके मिलदा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु।

आपके मिलने ने आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। परमात्मा अज तक जिन्हों भी मिले है भगत ने याद किया, बस

संध्या वेले दे समागम आप जी दी कृपा सदका सजाए गए सजे हुए दीवाना विच कीर्तन आरती सिमरन हर जस गुरबाणी दे

ठाकुर सखी मंगल गाया, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। सब मीत बंदप हर उपजे दूत थाओ गवाया, वाहे गुरु।

जिथे मेरा सतगुर बैठा जाए, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो

बोता प्रभु के शरण जापता पूजा प्रभु के शरण बिन से दूजा प्रभु के शरण तीर्थ स्नाने प्रभु के शरण दरगाह माने प्रभु के शरण हो सुफला प्रभु के शरण सुफल फला से सिमरा जिन आप सिमरा ये नानक ता कह लागो पाए प्रभु का शरण सबते ऊचा प्रभु के शरण उदरे मुचा प्रभु के शरण तृष्णा बुझ जाए प्रभु के शरण साव कच सुझ जाए

प्रभु जी बस साधके रसना नानक जनका दासन दसना प्रभु को सिमर से तनवंते प्रभु को सिमर से पतवंते प्रभु को सिमर से जन परवान प्रभु को सिमर से पुरख प्रधान प्रभु को सिमर से बहमता दे प्रभु को सिमर से सर्व के राजे प्रभु को सिमर से सुखवासी प्रभु को सिमर सदा बिनासी सिमरनते लागे जन आप दयाला नान जन की मंगेरवाला प्रभु को सिमर से परोपकारी प्रभु को सिमर जन सत बलिहारी प्रभु को सिमर से मुख सुहावे प्रभु को सिमर जन सुख बिहावे प्रभु को सिमर तने आत्म दीता प्रभु को सिमर तन निर्मल रीता प्रभु को सिमर तन आनंद कनेरे प्रभु को सिमर बसे हर नेरे संत कृपा ते अंदन जाग नाने सुनन पूरे पाग प्रभु के सिमरन कार्य पूरे प्रभु के सिमरन का बहु ना चूरे प्रभु के सिमरन हर गुण बाने प्रभु के सिमरन चाय सुमाने प्रभु के सिमरन ने चले आसन प्रभु के सिमरन कमल बगासन प्रभु के सिमरन आनाहा चुनकार सुख प्रभु सिमरन कांतना पार सिमर से जन जन को प्रमया नान तिन्ह सरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग भेद उपाय हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीचो कुंड दाते हर सिमरन तारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना

देवा हर हर जन के मार्ग देना हर तन जन को प्रभु देना हर जन के ओरसताणी हर प्रताप जने वरना जानी और भोजन हर थराते सुन सुमाद नाम रसुमाते आठ पैर जन हर हर जपै हर का पग प्रगट नहीं छपै।

सब चैन खट स्वास्थ्य सुमिरत वख्यान जोग अभ्यास करम धर्म क्रिया सकल त्याग बान मदे फिरया अनेक प्रकार के अभव जतना पुन दान हमे बरतना से घटा हमे करा तेवरत नेम कर पाते नहीं तो राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपे एक बार नौ कण पृथ्वी फिर चर दिवे माव दास तपि सुरथि व्याय अगन माय हो मत पर आन कन कैसव है वरपुम दान न्योली कर्म करे बवासुन जन्मार संयम साधन निमख निमक से कटावे तो पियो में मैल न जावे हर के नाम संसर का सुनाए नानक गुरमुख नाम जब तगत पाए मन कामना तेरे दय चुटा करो गुमान नमन ते उठा सोच करा दिन

रमैया के गुण चेत पराने कौन बोलते कम दुसाने जिनतो साज सवार सिगारिया कर भगन में जिन्हें अबारिया बार बस चत जे प्यारे दूध पर जोबन भोजन सुसूद

तुम्हार पिता हम बार्ग तेरे तुम्हारी कृपा में सुख नेरे कोई न जाने तुम्हरा अंतु चेते ऊंचा भगवंत सकल समग्री तुम्हारे सुतर तारी तुम ते हो सुआ।

मिथ्या राजो बंधन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या राथ वस्तु सुभस्रा मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता।

मिथ्यासुर पर्णिंदा सुनया मिथ्या परतर्प को मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रया रूपाद मिथ्या रसना भोजन अन्न स्वाद मिथ्याचार।

अवरव से आप न करे आव जाव जन मह महाराज के अंतर सेन्द्रंका किसी तरह संसार जो तुम पान तिर प्रदाता नानक चरण पर करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आप मान है।

मिठा साधु के संग घट घट डीठा सासंग पे आज्ञा करी सासंग पे ही मारी साग संग मिटे सब रोग नान सा पिटे संजो साग मैं वेदना जाने जेता सुने तेता बखिया अन्न है साग्यू मत गुणते दूर साग्यू मारे प्रपुर साग सुबह का नाही साग सुबह सदा बेअंत साग सुबह ऊंचे ऊंचे साग सुबह मुचे मुचे साग सुबह

ब्रह्म ज्ञाने सदा नर लय जस जन्म कमला लेप ब्रह्म ज्ञाने सदा नर दो जस सुर सर्व को सुख ब्रह्म ज्ञाने के दुष्टमान जस राज रंग को लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञाने के धीर देख ज्यो बसुता को खोता को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञाने का है गुनाह नान ज्यो पाव का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञाने निर्मत निर्मला जस मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मन हो प्रगास जैसे तरु पर्याकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्र समान ब्रह्म ज्ञानी के नाय अभिमान ब्रह्म ज्ञानी उचे उचा ब्रह मन अपने सबसे नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नानी जन प्रव्याप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल किरी नाथ ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानी चिन्ह ब्रह्म ज्ञानी के सब परमया ब्रह्म ज्ञान तिकज बुरा न पाया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट अमृत वर्षी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानी ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी को परास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी के गृपी सम्भा ब्रह्म ज्ञानी पर्व कारु महा ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा ब्रह्म ज्ञानी लतावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी का हो सुबला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संसुलोदार नानी ब्रह्म ज्ञानी जपा

ब्रह्मज्ञानी सदास जाग ब्रह्मज्ञानी और बनते जागत ब्रह्मज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्मज्ञानी के कर सदा आनंद ब्रह्मज्ञानी सुसाई निवास नान ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का वेता ब्रह्मज्ञानी

ब्रह्म ज्ञानी का दसवड़पा की पही है, ब्रह्म ज्ञानी को बलबल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नाने, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी के कीमत नाए, ब्रह्म ज्ञानी के सगल ब्रह्माए, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए दाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गल ब्रह्म ज्ञानी जानना है।

जियो प्रसाद की रात कर कर पूर्ण ब्रह्म प्रकाश अपनी बनता बनाई नान देवै देख बढ़ाई इसका बल नाई सहात कनक राम सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो ज्योति पावे सोई पंथी कबो जनेच में बसे कबो सो घर करंग कबो नंद चंद्र विहार कबो बकात पायाल कबो बेता ब्रह्म विचार नानिका मिलावनहार कबो नित करे बपात कबो सोए रहे दिन रात कबो महाक्रोध विकराल कबो सर्व की ओत्रवाल कबो होए भय बटराजा कबो भिखारी निज का साजा

पति जिसके अंदर राज सो नरपत सो आंदो जान मन जो बनवंत सोत विस्तार का जंत आपस को करवंत का वजन मरा भोजन परमावतन भूमिका दो करे गुमान सो मूर्खंदा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नान क्या मुता के सो पावे तनवंता हो कर कृपा वे तन समान

बृहस्पति संत के दुख न अर्धा कटा, संत के दुख न जापते नहीं छुटाए, संत के दुख न सो सब जाए, संत के दुख नरक में पाए, संत के दुख न मत होए मलिन, संत के दुख न सो बाते हीन, संत के दुख रखे न कोई, संत के दुख न तान भ्रष्ट होए, संत कृपा कृपा संत कृपाल कृपा दे करे नान संग संग तत्संग निंदक पीतर है, संत के दुख ते मुख पावे, संतन के दुख काग ज्यों लवे, संतन के दुख सर्व जन पाए, संग दुख दृजन क्रमाए, संतन के दुख तृष्णा में जले, संग दुख सबको चले, संग दुख ते सब जाए, संग दुख निचन चाहे, संदुख कथा को नाय नान संत पाविता पिगत पाए, संध कनंद कुमार ताई, संध कनंद खंड कन्ना पाई, संध कनंद कुमार त्यारा, संध कनंद परमेश्वर मारा, संध कनंद

तुझका हुक्म बुझ चुको है, तुझका नाम रंगकंड परो है। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नान विघ्न लागे कोई। उस मन में कंदरंकार कर मन मेरे सद व्यवहार, निर्मल रचना मृत पियो सदा सोहेला कर लियो। नानो पेठा गुर का रंग स्वास संग मन से सब संग, चरण चलो मारो गोविंद मिटे पाप जो प्यार बिंद कर। हर कम सरवन हर कथा हर दुर्गा नानको जुलम चावड़ पागे ते जन जग माए। सदा सुधार के गुण गाए, राम नाम जो करे विचार सतन।

सत्संग जिसका मनुमाना नान निरंजन जाने गुरु प्रसाद आपन आप सूझे तिलकी जानो तृष्णा बुझ जाए सा संग हरा जा सर्वरोग तैयार दिन रहा तन कीर्तन केवल व्यान गया

जिसको अर्पण मंचते आवे सो संत सुहेला ने डुलावे जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक हो के स्थिर डराए जैसा सत ऐसा दृष्टा है अपने कारण में आप समाया सो दसो दसो दस जय गुरु प्रसाद तथा बुद्ध जब देखो तब सब कुछ मोल नानक सो सुखम सोई असुथूल नय कच जन्मे नय कच मरे आपन जलता आप ही करे आप जाम दृष्ट अंदृष्ट अग्रकारी तारी सब सृष्टापे आप सगल में आपान जुगत राय थाप ताप अविनाशी नाय कि कर्ण तारण तारे ब्रह्मांड लख पे प्रभु प्रताप आप जप तान जाप जिन प्रभु जाता सो सो पावन सकल संसार उदरे तिन मन प्रभु के सेवक दुख सब के सेवक सकल दान प्रभु के सेवक दुख विचारण आपे मेले कृपा गुरु का सब जप निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसन कृपा करे बड़ पागे नाम जपा में विश्राम नानक तिन पुरुषोत्तम कर मान जोग कर सो प्रभु के रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभा सोए करने हर पचाने सोए प्रभु के जन्म

भगवान मेरे सदा हरदा पवन से प्रभ आपे आप आपन की आकचना है जो सबरानी नोचे को बिना तेरे किस काम कतना नहीं जपे कर नाम रूप हन तो इन मोहे प्रभु की जो सकल कट सो है धनवंता है क्या को कर भय जा सब को तुझका दिया दरबे असुर देखो कहा है प्रभु केवल कला बिना कहता वे देखो है बह दार से देना धन गावार जिस घर प्रसाद टूटे और रोग नानी सोजन सदा रोग जो जो मंदिर को थमे थम तंगुर का सोज मने थम बने ज्यो बखान नाम चढ़ तरह प्राणी गुर चरण लगत नित्य रह जो अंधकार दीपक प्रकाश गुर दर्शन देख

अविनाशी ब्रह्मन में राखमान केतु प्रत्याग से प्रेरणा सर्व नरंतर एक बिना पे धन गैर गंभीर गई सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल भक्त स्वात्र के जरने पाओ नानक मन अंदर आओ मनसा पूर्ण सरना जो जो कर पाया सोई हो गर परम जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने हो रे आनंद रूप मंगल सज्जा के सर्वथो सुने करता के राज में राज योग में जोगी तमत विसर्ग।

सकल परो ये अपने सो सुमत ज्ञान ध्यान जन दे जन दास नाम ते आवैसे ते गुण में ध्यान को परमाए जन मरा प्रया वेदाय उचनी दिसके स्थान जब सजना वे तैसा नान ध्यान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेक रैक रंग नाना बिलकिनो बिस्तार प्रभ न सी एक अंकार नाना चल कर माए पूर्ण सब उठाए नाना बिलकर बंत बनाई अपने

नाम का तारे आकाश पताल नाम का तारे शुक्लाकार नाम का तारे प्रियंता पवन नाम का समुद्र सुन सरवन करकर सपने नाम लाए नानक चौथे वर में सो जन गत पाए रूप सत जका सत्य तान पुरुष केवल प्रधान करतोत सत सत जाके बाणी सतपुर समय सुमानी सतकर्म जाके रचना सत मूल सत सत्योत पात सत करने निर्मल निर्मल जिस साहब बजाय तिस सत सत पल्ली सत नाम प्रभु का सुधाय।

आप सत सत सवतारी आपे गुण आपे गुणकारी सब सत सा प्रभक्ता सुरत सत सत जस सुनता गुजनार को सब होए नान सत सा प्रभ सोय सत सुरब जनमान कर ग्राम जन मोर पछाने जाकर देव स्वा प्रभ आया तद ज्ञान तस मन प्रगटाया पैत निरपो हो बसाना जिस सेव जय तुमाय समाना बस तुमाय ने बस कटाई तंको बिन न कह न जाई भुजे भुज नार भव एक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञा कारी ठाकुर का सेव सदा बुजारी ठाकुर के सेवक के मन प्रति ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेव जाने संग प्रभु का सेव नाम के रंग सेवक को प्रपालन हारा सेवक

जो हुआ हुआ सो जाने प्रभु ने कहा हुक्म बचाने के मैं कौन बखाने तिलका कौन कहा कि न जाने हुआ आठ पैर पर बसा जुरा कोला ने सही जन पूरे मन मेरे तिन की ओट ले मैं तिने अपना तिन जन दे जेने जन अपना प्रभु चाहता सोजन सर्व चौका दाता के सर सर्व सुख पावे तिलके दर सब पा मिटावे अमृत श्यान सहली चार ते जन की तू सेवा लाग आवन जाना हो तेरा नान ते जन के पूजो तो पैरा सलोक सत पुरग जन जाने सगुर तिसका नाव तिसके संग सिख उतरे नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिख करे प्रतपाल सेवक गुर सदा दयाल सिखी गुर दुरमत मल हिरे गुर वचन हर नाम चरे गुर सिखे बंधन काटे गुर का सिख विकार ते हटे सगुर सिखो नाम तंदे गुर का सिख उठ भागी हे सतगुर सिखा हल पल सुवरे नानक सतगुर सिखो जी नाल समारे गुर के ग्रह सेवक जो रहे गुर की आज्ञा मन में सहे आपस को कर कछ न जनावे हर नाम हृदय सजावे मन बिच सतगुर के पात सेवक के का धरा सेवा कर तो इन्हें काम तिसको प्राप्त स्वामी अपने कृपा जी साहब करे नाने सो सेवक गुरु की मत ले बीच बीच गुरु का मन माने सो सो सो परमेश्वर की कथ जाने सो सतगुरु दूसरे दयाल नावन कबार गुरु को बल जाओ सर्वधान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं कद पर हम सह सन बलैना जाइए नानक सगुरु पा की पाई सफल दर्शन पे कर पनीत परसद चरण का निर्मल रीत पेट संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगा गवे सुनकर वचन करना गाने मन संतो का दंपति पूरा गुरु आखो जा का मंत्र।

सारस्पति संतजनामिन करो विचारो एक सुमरनाम यदार और पासमित बसार चरण कमर दमाय रोतारो करण कान सो प्रथम रात दिल कर गाहो नाम हर वाथ

जैसे सुख को नित बाचे में सो सुख साधु संग परित जैसो बाखो कर परी करने सो बब दर की सन अन को पावे रोग न जाए रोग मुडारा खुद लाए सर्व निदान में नाम निदान जपना ने दर गया प्रवान मन प्रभु दर के नाय दत तापते आ बैठा है ताको बिघन लागे कोय जा कर दब से तो एकल ताते ठंडा रे नाव सिमर सिमर सदा सुख पाओ पवन से पूर्ण है आस प्रद पाया तम प्रगास तिद कर दैव सब नासी को नानक काटी जम भासी तद विचार कह जन साधा जन मरे चौका चौका चा

मन की तापाहु अंतर्गत तीर्थ मलनाहु सबगुण तेरे बैनाही कोए विणगुण कीते भगत ना होए स्वस्थ आदबाणी बरबाहु सत सुहाण सदा मन चाओ कमण सुवेला वक्त कमण

अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिवत सुभावा।

अनाद अनाहत जुग जुग एक को वेस एक दो जी भाओ लख होहे लख हो मैं लख वीस लख लख गेड़ा अख यह एक नाम जगदीश ए त्राह पत पवड़िया चढ़िया होए इकीस।

आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुख वाक पातशाही दसवीं।

सर्वंपर हैं, सर्वं कर हैं, सर्वास हैं, सर्वनाश हैं, करुणा कर हैं, विश्वंबर हैं, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खलखंडस है, परते पर है, करुणा कर हैं, अजपा जपे अथपा थपे, कृता कृता अमृता अमृता अमृता मृत है, करुणा करते हैं, अमृता करुणा करते हैं, अकृता करते हैं, तरनी तिरते हैं, मतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता करते हैं, अमृता अमृत है, अजवा करते हैं, अमृता अमृत है, नरनायक है, कलकायक है, विश्वंबर है, करुणालय है, निर्भनायक है, सर्पायक है, पभंजन है, अर्गंजन है, रिपतापन है, जब जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता करे हरता हरे, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस के जस है, भुजंग प्रयात छंद, नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राज, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेज, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो रासंग ताम संग सांत रूपे, नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञान, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो जुद जुदे, नमो ज्ञान ज्ञान, भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो सांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे, अनादंग विपते, कलंकार रूपे, अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांग बंके, अभंगी स्वरूपे, अनंगी नामे, त्रिभंगी त्रिकाले, अनंगी अकामे, एक अशरी शांत, अजाय अलाय अपय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपाख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगहटा अनाथे परमाते अजोनी अमोनि नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग परमंग अगंजे लेखे भुजंग प्रयाद छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निर्गांग निर्कामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासे सुधर्मंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी गरीमल गुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय विभूते गजायब गनीमे हरियंग करियं गरीमल रहीमे चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुगालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंग विभूते चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं

और सतगुरु प्रसाद तो प्रसाद स्वये पातशाही दसवीं श्रावक शुद्ध समूह सिद्धान के देख प्रयोग कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के सारे देश को देख रहे हो मत को ना देखित प्राण पति के श्री भगवान की भुवै पाए कृपा हूं ते एक रती बिन एक रत्ती के माधे मतंग जरे जर संग अनुभतंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग रंग से कूदत पावन के गौन को जात निवारे भारी पुजान के भूप लिप न्याव शीसना जात बिचारे एते भय तो कहा भाई भूपतंत को नांगे ही पाए पधारे जीत ब्रह सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूड़ जान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने गने ही जात बिचारे श्री पद श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दयाद मदान संजम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जवान सबान के भिख है पवन आहार जति जतार समय सुपचार हजारक देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रतीबन एक ना लिख है शुद्ध सिबाह दुरंत दुबह सुसाह सनाह दुर्जान दलाएंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीर मरोर मवासन माते मतंगन मान मलाएंगे श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलाएंगे वीर पार बड्डे बरियार अबचारे सार की धार बशैया तोर देश मिलिंद मवासन माते गंजान के मान मलैया गाड़े गड़ान को तोड़न हार सोबातन ही चकचार लवैया साहिब श्री सबको सर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव नंदन साजर भूत पविख भांज पाएंगे जीव जिते जालमय थालमय पाल ही पालमय सब थाप थपाएंगे पुन प्रतापन बाढ़ जय धुन पापन के बहु पुंज खपाएंगे साध सु प्रसन्न फराया जग सतर सब अवलोक छपाएंगे मानव इंद्र जिंद्र नरात जौन त्रलोक को राज कराएंगे कोट स्नान गजादक दान अनेक स्वंबर साज भरेंगे ब्रह्म ऐश्वर विष्णु सची पत अंत फसेजम फास भरेंगे जय नर श्री पद के प्रस है पग ते नर फिर न देह तराएंगे कह पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो भगत ध्यान लगायो नहात फिर यो लिया सास समुद्रन लोग गयो पर लोग गवायो बास कियो विख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साज गहू सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो काहू ले बाहन पूछ रहे सिर काहू ले लिंग लटकायो काहू ले खर बाची दिशा में काहू पशाह को शीस निवायो को बतान को बूझत है पास को मृतान को पूजन धायो कूर क्रिया उर जाओ सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो कहू बिता बुतान को पूज सह पास कहू मृतान को पूजन धायो कूर

करो प्रतपार अमरे दुष्ट सबै तुम गावो आप हाथ मोहे बचावो सुखी बस है मोरो परवार सेवक सिख सबाए करतार मोर शान ज करता है करे सब बैरन का आ संग रहे पूर्ण हो हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊ जो बर

लेहु उबारी, सर्व ठावर मोह हो सहाय, दुष्ट दोख ते लेहु बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता, केलवे सगल दे को हरता, दुष्ट दुखिन को शाय करता। श्री अस्तुज पहे दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तकाला, मन बांचत बल पावे सोई, दुखना तसे व्यापत कोई अड़िल। सुने गुंग जो यहे सुरसना भावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पाओ निकट ना।

कुदरत साजे कर आसन डिठो जाओ दाता करताप तुस्ते वै करे पसाओ तू जाने सब सदला सजन कवाओ कर आसन डिठो जाओ कर आसन डिठो जाओ।

ते सब उतरे पाप कमाते। सो जिहड़ा बचन मन के महाराज साहब जी का भावना रख के प्रेम रख के इशनान करदा अमृत सरोवर च, जिन्ने बचन इस शब्द च कहे उन्हूं सारे पूरे हुंदे आ। आखो सतनाम श्री वाहे। खेड सारी भावना दी खड़ी है। मोटर थले नलके थले इशनान कर रहा सिख, खेड सारी भावना दी खड़ी है कि इशनान मोटर थले कर रहा है। फल उन्हूं महाराज जी दे चरणां च दरबार साहब दे किते इशनान दा मिल रहा है। क्यों? उहदी सुरत गुरु चरणां च अपड़ी हुई है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ओ अपने घरे इशनान करदा भी यह अनुभव करदा मैं गुरु के दरबार च कर रहा हाँ। फिर जदों किसी दे अंदर दी ऐसी दशा हुंदी है उहदे ते बख्शिश क्यों नहीं होएगी? जरूर होएगी। महाराज जी निवाजदे आ। सो इत्थे दस्या वी इशनान दो तरां दा, एक घरेलू एक धार्मिक। ते घरेलू जिहड़ा जदों असी मन करके गुरु के चरणां च हुन्ने आ उह धार्मिक बन जांदा। कई वार धार्मिक मौके ते पहुंचे होए आ महाराज दी शरण च, तुरे फिरदे अपने नगर मझां गावां दे ख्याल च, ते उत्थे तीर्थ ते कीता इशनान भी वो घर वाले दे बराबर हो जांदा। ये सारी सुरती दी खेड है। ते सुरती किवें टिकदी है? महाराज जी कहिंदे गुरु दी कृपा दे नाल। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरपुरै कृपा तहारी, प्रभ पूरी लोच हमारी, कर इशनान ग्रह आए आनंद मंगल सुख पाए। गुरु की कृपा तो बिना सुरत की एकाग्रता नहीं बनती। तो जो किसी की सुरत की एकाग्रता बनी होंगी है उसका हर इशनान गुरु के चरणों के विच गुरु की शरण के विच किया हुआ मान लो, क्योंकि वह महाराज साहब जी के दर तो बख्शे जाते हैं, कृपा वाले हो जाते हैं। एको भी ने जिन्हां दे अंदर निंदिया ही रह जाती है कली, बस होर कोई लाहा लै ही नहीं सकते। कारण की है? लाहा ना लैण दा अपना सुभा, अपनी जड़ता, अपनी हौमै, अपना अहंकार। जिहड़े महाराज दे घरे निमके चलदे आ, भावना रखदे आ, उहनां दे अंदर हौमै अहंकार इह चीज़ां नहीं हुंदियां। उहनां ते महाराज जी दी मेहरामत, महाराज जी दी कला वरतदी रहिंदी है भाई। फिर कहिंदे जदों उह इशनान करके अपने घर नूं वापस परतदे आ, खुशियां खेड़े उन्होंने चोली च पे होंगे। एक तीसरा इशनान है अध्यात्म का इशनान। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु।

जीव जंतु सब पवित्र हो गए। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। एक बार दी वार्ता है जन्म साखी च जिक्र मिलता है। महाराज साहब जी एक जंगल च बैठे है ते महाराज जी कहते लिया मरदानिया रबाब रबाब बजाइए बाणी आई है। भाई मरदाना जी ने रबाब बजानी शुरू की। महाराज साहब जी ने धुर की बाणी के शब्द गाने शुरू किए। इन्ने भिज के शब्द गाए के उस इलाके दे विच जंगल जिथे महाराज जी बैठे सन जिथे जिथे तक रबाब की धुन गुरमुख प्यारियां दी बाणी दी धुन जांदी सी उत्थे उत्थे तक जिन्ने भी जीव जंतु सी सारे उठ उठ के हौली हौली हौली हौली महाराज दे चरणां च बह गए। आके आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। कवि जी कहिंदे

हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो सतगुर।